हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी के स्वर में सर कबीर दास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

0: ಹಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ.
1: ದಿನ ಕರ ತನಯ ಪಾಯಲ, ದಿನ ಕರ ತನಯ ಪಾಯಲ.
0: ಆ ಭಾಗ ಹಾಡಿಗ.

0: मयिदयाङ्कुरु
1: पमदनी सासा रिसरी
0: रिसरी ताला गति एल्ला नोडकोबेकु टकिटते

तबला बाय श्री नंद कुमार पर्वतकर, हारमोनियम बाय श्री वेंकटेश गोडखिंडे। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट नाउ लिसन टू राग ज़ीलफ। ख्याल विलंबित तीन ताल, तब तू जंग समान, धृत तीन ताल, दरस भिन्न सुनो।

ಕಿಟ್ಟ

Tak kita dengar.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए पेश है राग नट भैरव पर ख्याल. कलाकार हैं ऑर्घ्यो चक्रवर्ती. आपके साथ तबले पर हैं सुब्रतो गुप्ता और हारमोनियम पर है देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर ख्याल. कलाकार हैं ऑर्घ्यो चक्रवर्ती.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the rag Nat Bhairav. Our artist is Orgho Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla is Shubroto Gupto and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to Khayal in the rag Nat Bhairav, our artist Orgho Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे औरघ्यो चक्रवर्ती। आपके साथ तबले पर थे सुब्रतो गुप्ता और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग भटियार पर सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसा। आपके साथ तबले पर हैं इंद्रनील भादुड़ी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भटियार पर सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसा।
1: You were listening to Khayal in the Raag Nat Bhairav. Our artist was Orgho Chakraborty. Accompanying our artist on

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भटियार पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे कौशिक बसाक। आपके साथ तबले पर थे इंद्रनील भादुड़ी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग भटियार। आवर आर्टिस्ट वॉज कौशिक बोशाक। Accompanying our artist on the tabla was Indranil Bhaduri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, यह है रेडियो चैनल रागम, 24 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है. प्रस्तुत है उपशास्त्रीय गायन. उपशास्त्रीय गायन का आरंभ कर रहे हैं विदुषी रीटा गांगुली के गायन से. आपने प्रस्तुत किया है कौशिक ध्वनि दादरा, बोल है कैसे कटे दिन रतिया. आपके साथ हारमोनियम पर है अनंत केमकर, तबले पर है अख्तर हसन.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे कौशिक ध्वनि दादरा। कलाकार थी विदुषी रीटा गांगुली। आपके साथ हारमोनियम पर थे अनंत केमकर और तबले पर थे अख्तर हसन। उपशास्त्रीय गायन के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विदुषी सुहासिनी कोरटकर की गायी हुई ठुमरी, कैसे मन लागे मोरे श्याम बिना।

हम सुन रहे थे विदुषी सुहासिनी कोरटकर की गाई हुई ठुमरी। आइए अब सुनते हैं विदुषी बेगम अख्तर की गाई हुई ठुमरी, कैसे बंसी बजाई राधा सुधा बिसराई।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे विदुषी बेगम अख्तर की गाई हुई ठुमरी। उपशास्त्रीय गायन के अंत में आइए अब सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी की गाई हुई भैरवी ठुमरी। बोल है रसक के भरे तोरे नैना सांवरिया। आपके साथ तबले पर है नाना मुड़े और हारमोनियम पर है पुरुषोत्तम वालावलकर।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी की गाई हुई भैरवी ठुमरी। आपके साथ तबले पर थे नाना मुळे, हारमोनियम पर थे पुरुषोत्तम वालावलकर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अभय नारायण मल्लिक का गाया राग अहीर भैरव. चौताल में निबद्ध ध्रुव के बोल हैं, प्रातः समय श्याम सुंदर को

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग तोड़ी, बोल हैं परी आली री। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित अभय नारायण मलिक। नाउ लिसन टू राग तोड़ी। द आलाप इज फॉलोड बाय धमार। द वर्ड्स आर परी आली री। He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय पंडित अभय नारायण मलिक। ही वाज अकंपनीड बाय श्री मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है सीमा रानड़े। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग रागेश्वरी, सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध रचना कोल है आलीरी पलकन लागी, और द्रुत आधा त्रिताल में निबद्ध रचना के बोल है लगन लागी तुम्हारे दर सकी। सात संगत तबा माधो मोड़क, हारमोनियम शुभांगी भवसार।

और अब सुनते हैं सीमा रानड़े द्वारा प्रस्तुत राग रामकली विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोले माँ छरिया मेहंदी और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोले सखीरी मेरे मन की। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं माधो मोड़ा, हारमोनियम पर शुभांगी भवसार। तो आइए सुनते हैं राग रामकली, कलाकार सीमा रानड़े।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सीमा रानड़े द्वारा प्रस्तुत राग रामकली। आपके साथ तबले पर थे माधो मोड़ो, हारमोनियम पर शुभांगी भवसार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चार ताल की सावरी और तीन ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं देवाशीष मुखोपाध्याय. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन. देवाशीष मुखोपाध्याय तबले पर पहले प्रस्तुत कर रहे हैं चार ताल की सवारी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ तबला रिसाइटल इन चार ताल की सवारी एंड तीन ताल. आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग Devashish Mukherjee, accompanying on the harmonium, Somnath Bardhan.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप चार ताल की सवारी में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे देवाशीष मुखोपाध्याय। देवाशीष मुखोपाध्याय अपना तबला वादन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं तीन ताल में तबला वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे देवाशीष मुखोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग झिंझोटी में बांसुरी वादन। आज के कलाकार हैं अशोक बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार।
1: यू आर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन चार ताल की सवारी एंड तीन ताल बाय आवर आर्टिस्ट देवाशीष मुखर्जी एकम्पानिंग ऑन द हारमोनियम सोमनाथ बर्धन। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, now listen to a flute recital in Rag Jhinjhoti. Our artist this evening, Ashok Banerjee, accompanying on the tabla, Devashish Sarkar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग झिंझोटी में बांसुरी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अशोक बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a flute recital in Raag Jhinjhoti by our artist Ashok Banerjee, accompanying on the tabla Devashish Sarkar. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं नैना देवी.

आप सुनेंगे दादरा, बोल हैं गोरी बन के नैनों से चला जादुआ। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दूखां और सारंगी पर सरदार खां। ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1980 में की गई थी। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द रेंडिशन कमेंसेस विद अ दादरा। द अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। दिस वॉज रिकॉर्डेड इन द ईयर 1980।

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल हैं धीरे धीरे से जाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नाही। नवलसुआ दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी, बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी नैना देवी। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दुआ और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी।

रानी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दो खां ऑन द तबला एंड सरार खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन. कलाकार है महंत विजय रामदास. सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीर्ष त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणिधर शशिध जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्र गण हर विरंच सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धारिंदा धारिंदा धारिंदा जय जय मन मधारि धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपाधर चरण शरण नित ध्यावत गौर वरण भुज इंद्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति निति नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर।

गिंतरांधा

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागिन धागिन त्रिकृतकता त्रिकृतकता धित धित धे धे धे कृतेता धेता धल धल धल धल धिलांग कृतान कृता टे धुम कृतकता धृकृतक धे धे धकिट किट धागे तिट।

बम बम शिव शिव अगर बम डिमी डमरू डमक डिमी डिमी डिमी बाजत डिमी डिमी डिमी डिमी टिके डिमी डिमी धम करतक धम करतक धम करतक करतक आदम करतक करिंग बम बम उपकार करत फणि धर भुजंग सिर धर ति धर ति धर धर धर धवल धार गंगा छ बिचार ति धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर जटा घटा महचंद्र छटा गिरी धकट धा धा गिरी त्रिपुंड राजे मुंड मा वक्षस्थल साजे करत शूल चम चम चम चम कत भरत सबार मार मद मर शांत स्वरूप अनूप सकल सुर भूप मुकुट मणि ध्यान धरत कल्याण कर उतरत मुनिगन नित धा धा दिंता धा कृधान धगत टिकट धकट धगत धान धान धगत टिकट धान बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला।

धान धान धगते रिक धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला धान धान धगते रिक धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला।

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित गत झपताल में और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय विपुल कुमार रॉय. ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक. Bipul Kumar Roy first presents Rag Megh, in which you will hear the Alap, Jod and Jhala. The Vilambit Gat is set to Jhaptal and the Madhyalaya is set to Teen Tal.

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। मध्य लय और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग मेघ। विपुल कुमार रॉय नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग मालकौंस, इन विच यू विल हियर द मध्यलय एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग मालकोंस वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय श्री विपुल कुमार रॉय। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रतिभानुजी देशपांडे की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है अनुराधा मराठे ने।

अनुराधा मराठे ने गाई प्रतिभानुजी देशपांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सर बहिणा बाई रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है रघुनंदन पंशीकर ने, स्वरबद्ध किया है रविन्द्र खासनीस ने।

रघुनंदन पचिकर के स्वर में संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। संगीतकार थे रविंद्र खासनीस। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक पारंपरिक भक्ति रचना जिसे प्रस्तुत किया है वीणा भक्ति मंडल ने।

वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत एक पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में, रचयिता हैं संत तुकाराम महाराज।

संत तुकाराम महाराज ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पुष्पा रानड़े के स्वर में संत न्यूरोबाई की ये भक्ति रचना।

संत निरोबा राय की भक्ति रचना भी आपने सुनी पुष्पा रानड़े के स्वर में। कार्यक्रम की अग्रिम भक्ति रचना है मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक हिंदी भक्ति रचना। रचयिता हैं नारायण स्वामी। सुधा मल्होत्रा ने इसे गाया है और स्वरबद्ध किया है मधुकर गोळवलकर ने।

नारायण स्वामी की ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुधा मल्होत्रा के स्वर में। संगीतकार थे मधुकर गोलवलकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रविंद्र साठे और सहकारों के स्वर में संत ज्ञानेश्वर महाराज की ये भक्ति रचना।